0: रेडियो सुनो 91.7 एफएम
1: कतर्स हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी नाउ अवेलेबल ऑन एप्पल पॉडकास्ट एंड गूगल पॉडकास्ट.
2: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
3: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
4: This is Radio Suno.
0: 91.7 FM.
4: Qatar's favorite radio station.